खिन में था पनिवाजे ठाकुर, खिन में था पनिवाजे ठाकुर, नीच कीत से करे राजंगा, नीच कीत से करे राजंगा, कभो न

कौन करे, पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो, सगल कर्त नमस्कारो, वन

सत्संग जी हो गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच साल की बराबर की सवारी है और अज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्हों भी हैरान करिए अज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है

कदम सुहामने हैं जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते हैं।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता करांदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैणी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे, इस लई जे जपना है।

ہم بھی ایسے باغیچے کے بوٹے بن جائیں جس باغیچے کے بوٹوں کو واشنا رہت پھل لگتا ہے، نربھان پد پراپت ہوتا ہے، ایسا پھل جس میں نام رس ہے، نام رس کے علاوہ اور کوئی بھی واشنا نہیں، اور ایسے گرو کو نمسکار کریں جو ایسا مالی ہے، جو ان بوٹوں کو امرت سے سینچتا ہے۔ دیکھنا، اس باغیچے کے باہر جا کر دیکھو، آس پاس بھکھوا کے کنٹا، باہر ایرکھا ہے، دبدا ہے، کپٹ ہے، چھل ہے، باہر تو زہر ہے۔ اسی لیے ہمیں چیتن کرتے بولے، دیکھنا اس کے بھیتر آپ کو امرت سے سینچا جاتا ہے، وہ ایسا امرت جس نے آپ کو امر کرنا ہے، جس نے آپ کو جنم مرن کے چکر سے بچانا ہے، آواگون سے بچانا ہے، اور ایسا ہے جو گرو کی نظر میں پھولتا ہے، اس بوٹے کو ایسا پھل پراپت ہوتا ہے جس پھل سے وہ سچ پرگٹ ہو جاتا ہے، جس سچ سے یہ بویا گیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گرمکھ کی ٹیک جو ہے نام ہے، اونلی نام، گرمکھ کی ٹیک اونلی نام، گرمکھ پرماتما کے گنوں کی سگندھی بانٹتا ہے، یہ گرمکھ کا دان ہے۔ گرمکھ پرمیشر کے نام کی کمائی کر، گر شبد کی کمائی کر، اپنے من کو، اپنی مت کو تو لیتا ہے، یہ گرمکھ کا اشنان ہے۔ پانی سے تو سب نہا لیتے ہیں، لیکن جو بانی سے نہاتا ہے وہ گرمکھ ہے۔ دیکھنا، پانی سے ہم نے اپنے تن کو، اپنے شریر کو اشنان کرانا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نے اشنان نہیں کرنا۔ شریر کو پانی کے اشنان کی ضرورت ہے، لیکن پانی کا اشنان کے علاوہ آپ کو من کو بھی بانی کے اشنان کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی دیر تک بانی سے اشنان نہیں کرتے، آپ کا من اروگ نہ ہوگا۔ دیکھنا، جی من اروگ نہیں، جیون بھی اروگ نہیں۔ جی جیون اروگ نہیں، یہ کایا بھی، یہ تن بھی اروگ نہ ہوگا۔ صرف ہم سوچ لیں کہ صرف تن کو اروگ رکھیں، من یہ تندرست نہ ہوگا، تے شریر بھی کام کرودھ کایا کو گال ہے، جو کنچن سہاگا ڈال۔ من کرودھ کرتا ہے، من کام کرتا ہے، لوبھ کرتا ہے، لیکن پوگنا تو شریر کو پڑتا ہے۔ پوگتا شریر ہے، اس لیے گرمکھ بانی سے اشنان کرتا ہے،
प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रे हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितरसा दे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के ए हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरुमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरुमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरुमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरोवर है संतो, स्नान करो लेवला। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना, ऐसा स्नान किया अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है, उसकी देखनी कैसी हो गई। अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुरु देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखो वाहिगुरु। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम अखो वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरमुख का दान है। निरपो हुए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान अखो वाहिगुरु। ऐसा दान, ऐसा दान करने वाला गुरुमुख एक बेनती कर दूं, ये कभी मरता नहीं अखो वाहिगुरु। गुरुमुख कभी नहीं मरता। देखना, शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं अखो वाहिगुरु। मेरे साहिब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्मे सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरुमुख नहीं।
जो गुर के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुर का शब्द अपार। आखो भाई, जिथे गुर का शब्द है उससे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। आखो भाई, गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं, और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख ये बोलता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो। आखो, किस हर किया पेओ कबीर कबीर। भगत कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है, ना हम किया ना करेंगे, ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम, जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है, हम किया हम करेंगे। आखो भाई, हम मूर्ख। आखो भाई, गवार। करने वाला बिसरिया दूजे पाए पिया। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है, कर कुछ सकता नहीं। पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीवदे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। आखो भाई, देखना, आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है, चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे। लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा। छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है। वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया, जे पतझड़ आ गई लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई। जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मन मुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं। वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं। पेशा कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा। वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीड़ तो सकती है, सुख नहीं। मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो टूटी भली जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है। लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे। जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं। लेकिन जो मनमुख हैं, टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया। ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें। संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है। जीवन में भी धन धन हो तो अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मानमुख जन्म मरा है आख वाहिगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

सो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। सो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है, प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दियां भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है, फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। आखो भाई, टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे। आखो भाई, आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है। आखो भाई, मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था। आखो भाई, बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा। आखो भाई, लेकिन इसकी विदाईगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है। जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना। आंखों वाहेगुरु, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते, वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे, आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے سروتا اچھا مل جائے، وسمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے۔ جے سروتا وسمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرکٹ ہو جائے گا۔ سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میں ایک ہو جائیں گے۔ آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے۔ آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ، رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ستگر

ते सेवा संभाल दा दान खालसा जिन बख्शा इन माणियां दे माण ताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु

निर्धन को पालिए निर्धन को पले निर्धन को पाले हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा का ना है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंग दे हैं आज पंजवा निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने ओ भी निर्धन नू पालना है सत्संग अज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

इस बार दसा साडे अंदर एक मन है, एक आत्म है। मन का सवाल है लेना लेना, आत्मा का सवाल है वंडना वंडना देना। जे तुहानू शौक लग जे, शौक चढ़ जे, प्रसादे पकावां उत्थे जाके वंडा, फलानी चीज करो लवां उत्थे जाके वंडा, थोड़ा कुछ पेर दसवंध फरूट लवां वंडा, ये कितने सुभाव बन जे, समझो आत्मा चढ़दी कला च जा रही है। हुण देण ते खुशी आती है, शांति मिलती। जब तक सुभाव खोना खोना।

चंचल मन बलवान इसी पौड़ी है जिदा इस नक्शे नाल तलक है। कहिंदे ओ खालसा जिहदी आत्मा बलवान है जिन्हों हुण देण ते खुशी हुंदी है, किसे नूं पालण ते खुशी हुंदी है, भावें माया राही भावें बोलां राही भावें किसे